पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले साँझ 5 बज्यो।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

0: मेरे प्यारे बुढ़े, मेरे मुंह और जुन के लिए बिचारा आज सामने मेरे दांत पर ही बसी रोले मुंह पर जाए कुछ खत्म से बोले तेरे जान जोर माते रहा कुछ तो मला ये ला अपन किया मेरे बुढ़े
1: बुढ़े बंदा इसलिए
0: ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माय सातो पुत्र फ्लाइंग आफ्टर सी यू
1: तमरी नहीं बोलते ना
0: तने के हरे सातो पुत्र उड़ जा भले क्या ए मेरी प्राण पेरी मलर माया गोरी जो इमला समझी आए पुगे मां पितरे छिड़ना दो दार बंदा बोली

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे